अगला मगड़िया तो यंगी चेंगे चिता के ना गिलंगो अने वेंडियाक पैसा चो स्टार 4421 पुकुसे नंबर वन अंग नंबर टू 213,000 and 400,000 star 4421

कसरी निहुङ्गै चुकुल लेमी ते जम्मु हाई बुन का बरास्त हो सके यु त प स्टुडियो का बरास्त हो सके ल थाउने का बरास्त हो सके ज तक के बगत गुल गतो मा हाई बुन ज तक के बा मे चगाई चोइ जिंग यु त प स्टुडियो सा मे फैमिली या ने बा का मिस्टर एंड मिसेस जेरेमिया किरुई वेरी ताब अरब की टूर एंड गोकुए ताब सिंगरवे ते सिंग साइन पोस्ट सरकारी ताब काउंटी ने बा बोमेट आग कांड्रेक्ट गुल ज तक के बा बोमेट ची तुगुल ने तिने मगेत ने मिए